0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। आफात से निमटने के जिम्मेदार नेपाली हुकूमत के एक ओहदेदार का कहना है कि हुक्काम गुज़िश्ता माह आने वाले हलाकत खेज सैलाबी रैले और मिट्टी के तोदों से मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव धर्म राज अप्रेती ने जुमेरात को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में NHK से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरिया के किनारे और आफत से मुतासरा दीगर इलाकों को आबादी के लिए गैर महफूज करार देने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तवील मुद्दती आबादकारी के लिए महफूज मकामात का इंतखाब कर रही है और स्कूलों, अस्पतालों और दीगर सहूलियात की मुंतकिली के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए मकामात पर मुंतकिली मुमकिन तौर पर अगले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी और हुकाम आर्जी रिहाइश की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जापान से तआवुन तलब करने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि पन बिजली घरों की सुरंगों में फंसे हुए लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुमकिन तौर पर 1 से 2 हफ्तों में खत्म हो सकता है। शिमाली कोरिया की तरफ से अगवा किए गए जापानी शहरियों के खानदान के अरकान ने तमाम बाकी मानदा अगवा शुदगान को जल्द अज जल्द घर वापस लाने के लिए मदद की अपील करने की खातिर वॉशिंगटन का दौरा किया है। योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगुमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल के पहले साल की तालिबा थी। ईजुका को इचिरो की वालिदा तागुची जायको को उस वक्त उठा लिया गया था जब वो सिर्फ 1 साल के थे। योकोता और ईजुका ने अमरीकी दारुल हुकूमत में सरकारी हुक्काम और कानून साजों से मुलाकात के बाद बुध को एक न्यूज कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगवाशुदगान के रिश्तेदार बूढ़े हो रहे हैं और ये कि उन्होंने इस मामले के सिलसिले में अमरीकी हुकूमत से तफहीम और तआवुन की दरखास्त की थी। योकोता ने कहा कि उन्होंने लोगों को अपनी वालिदा साकिए और अपनी अगवाशुदा बहन की तस्वीर दिखाई। साकिए अब 90 साल की हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि जज्बे के साथ पहुंचाए गए और सुनने वालों की आंखों में देखकर बोले गए अल्फाज अमरीकी मुआशरे में गूंजेंगे। ईजुका ने तशवीश जाहिर की कि अगर रिश्तेदारों ने आवाज उठाना जारी न रखा तो ये मामला भुलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा हैं अपीलें करते रहना चाहते हैं। जापान के मयारी तवील मुद्दती हुकूमती बॉन्ड का मुनाफा तकरीबन 30 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। जुमे को एक मरहले पर 10 साला बॉन्ड का मुनाफा 3.115% तक पहुंच गया। जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि ये शरह अगस्त 1996 के बाद सबसे ज्यादा है। खाम तेल की बुलंद कीमतों की वजह से अफरातजर के खदशात ने अमरीकी और यूरोपी तवील मुद्दती शरह सूद को भी बढ़ा दिया है। इसके बायस जापानी हुकूमती बॉन्डों की फरोख्त में इजाफा हुआ और मुनाफे की शरह बुलंद रही।
1: और सामेन, आखिर में आज की अहम खबर का खुलासा पेश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाशिंगटन में अपनी सरबराही मुलाकात समेट ली है। जुमेरात को होने वाली मुलाकात मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद इस साल उनकी दूसरी रूबरू बातचीत थी। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई।

0: अक्सर जापानी मिठाइयाँ और स्नैक्स देखने में भी खुशनुमा होते हैं। मौसम बहार में चेरी के फूल मरकजी मौजू होते हैं। मौसम गर्मा की बाद मिठाइयाँ तारों भरे आसमान या शफाफ नदी जैसे लगते हैं। पार्फे भी रंग बिरंगे फलों की काशों की वजह से आंखों को भला लगता है।
1: उम्मीद है आप जापानी मिठाइयों की खुशनुमाई और जायके दोनों से लुत्फ अंदोज होंगे।